0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ছৰ ফিৰোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट

0: है हैवी ट्रक्स और बसेस पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानी यहाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু।

0: 9 বজাত শুনিবলে পাব।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी

0: प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं।

0: पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পিছতে 12 বজাত হিন্দী বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आशिकी टू सिनेमाखनर परा अरिजित सिंहर कंठर आन एटी गीत एबार आगबढ़ाबले लोवा हैछे।

0: আইডিঅ'ৰ বুলনি অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পিছতে এক বজাত হিন্দী আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार

दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्व

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप

0: ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: মিডিয়াম ওয়েভৰ 411.5 মিটাৰ, 729 কিলোহাৰ্জ আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত, লগতে নিউজন AIR মোবাইল এপত। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादाबफोर सानसम हंगुर बर'आ गोदानै मन्त्रि बिबान मोननो गोनां मन्त्रिफोरनि मुं फारिलाइखौ दिनै फोसावनायनि मिजिं दं। मैया हादरगिरि मुसलिमा द्रौपदी मुर्मुखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनाय उनाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीयाव सौफैनानै गोदान मन्त्रिफोरनि मुं फारिलाइखौ हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि आखाइयाव दिनै गथायगोन। गाबोन खानाफोरानि ज्योति विष्णु हायुं गेजेरेरा आरिमु मन्दिराव साननि 12:45 मिनिटाव गोदान मन्त्रिफोरखौ हादरसा बेंगिरि मुश्री आचार्यआ समायखिरा लाहोगोन। मख'जाथावथे थांनाय 12 मेखालाराव गिबि मन्त्रि मुश्री शर्माजों लोगोसे रामेश्वर तेली, अतुल बरा, अजन्ता नियोग आरो सरन बरुवा मन्त्रि महरै समायखिरा लादोंमोन। श्रीभूमि जिल्लानि लामा आरो हायुंआरि राजालामा जौगानायनि थाखाय मिरु सरकारा 62 कौटि रां दैथायहरदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान दिल्लीयाव मिरु लामा फोनांजाब आरो राजालामा मन्त्रि नितिन गडकारीखौ लोगो हमनाय समाव गिबि मन्त्रिया लामा जौगानायनि सोमोन्दै सावरायो। सावरायखांनायनि उनाव मिरु सरकारा मख'नाय दोहोनखौ लामा जौगाखांनायनि खामानिनि थाखाय दैथायहरनो गनायथि होयो। आसाम सरकारा डिमा हासावनि थाखाय 3,875 कौटि रां खरसा खालामनायनि लामा जौगाथायनि मोनसे मावबिथांखिखौ बेखेवनानै होयो। मुलुग बेंकनिफ्राय रां अनसुंथाय मोननाय रांपुन्जिजों हाजारि जिल्लानि जौगानायनि थाखाय बे मावबिथांखिखौ मावफुंनो लानाय जादों। मैया बेखेवजेननाय हाबाफारियाव मुलुग बेंकनि सानैसो थान्दै आरो हादरसा सरकारनि गागि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

हादर गेजेरारि दावहानि जाहोनाव हरमुज खान्थि बन्द' जानायनि थाखाय गेस आरो थावनि बेसेन बांनानै हादराव सोमजिनि आंखालखौ नोजोर बोनानै बिटिसि गाव हायुं सुंथाय सरकारा मैया खायसे गोनांथार थांखि लायो दि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आरो सोद्रोमाफोरनि दान बान्थाखौ फैगौ 6 दानसिम 30% खमायनानै होनाय जागोन। क'क्राझारनि बड'लेण्ड सचिवालयआव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मैया खुंनाय सावरायमेलाव बे गोनांथार थांखिखौ आजावनाय जायो। ओरैहाय हाजोम गैजायै न'खरनो हानि पाट्टा राननानै होनायनि थांखिखौबो मैया आजावनाय जायो होननानै रादाबाव मिथिहोदों। सा सानजा परिसरनि खुंगा 73 आबुं जथुमा दिनै मेघालयनि राजधानि शिलंआव जादों। मिरु न'खर मन्त्रि अमित शाहनि मासि दैदेननायाव जानाय बे जथुमा अञ्चलनि गोनांथार खायसे जायगा जौगानायनि थाखाय दानानै होनाय गिबि मन्त्रिनि गोजौ खलमनि मावफुं सोद्रोमानि सोमोन्दै जर'खाय सावरायनाय जागोन। बे सावरायमेलाव दावबायनाय, आबाद, दोन्थुमनाय, रांखान्थि, करिदर जौगानाय, गाइखेर, दावदै, ना बेदर दिहुन्थायनि जोहै गावसुंथा जानो हानायनि सायाव सा सानजानि गिबि मन्त्रिफोरा गावनि खारिथिखौ गथायगोन। दिनैनि जथुमा डनार मन्त्रि ज्योतिरादित्य, डनार हादरसा मन्त्रि सुकान्त मजुमदार, सा सानजानि मोन 8 रायजोनि हादरसा बेंगिरि आरो गिबि मन्त्रिफोरजों लोगोसे मिरु आरो हादरसा सरकारनि गागि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादों। गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिया जुबिन गार्गनि थैनाय गसरनि गाहाय दायनिगिरि सिद्धार्थ शर्मानि जामिन आर'जलाइनि हियारिंखौ दिनै नाजावगोन। दायनिगिरि सिद्धार्थ शर्माया जाख्ल'नाय रांजों महाबीर एक'वा मुंनि फालांगियारि फसंथानखौ गायसनदोंमोन। जुबिन गार्डनिफ्राय रां जाख्ल'नानै बे फसंथानखौ गायसनदोंमोन होननानै फोरमान मोननाय जादों आरो बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय खुंथायनिफ्राय गनायथि लानाय जादों। प्रसार भारतीया आसामनि साब्रै छात्रिया मोसाखौरिनो टप ग्रेडनि गनायथि होबाय। बिथांमोननि गेजेराव संगीत नाट्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हादरसानि गागि मोसाखावरि रामकृष्ण तालुकदार, संगीत नाट्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अनिता शर्मा, डॉ मिरनान्दा बरठाकुर आरो विष्णुमणि शैकेयाबो दं। मख'जाथावदि टप ग्रेड बान्थाया जादों सासे आरिमुगिरिनो बावनाय हादरनि जौसिन सन्मान। सा सानजा थिसनजानाय रैखाथि हान्जानि खलबाव गाइखेर आरो गाइखेरनि मुवा जागायनायखौ गोसारहोनो थाखाय थांनाय मंगलबाराव हायुंआरि समबाय गाइखेर फेडारेशन आरो आसाम राइफल्सनि गेजेराव मोनसे गोरोबथायाव सागान होनाय जायो। बे गोरोबथानि जोहै बाहागो लागिरि समबायफोरा बोसोरफायाव खमैबो 44 कौटि रां खामायनो हागोन होननानै मिजिं थिनाय जादों। गोदान दिल्लीआव सागान होजानाय बे गोरोबथानि सिङाव आमुल, नन्दिनि आरो वारानाखौ लाफानानै गुबुन समबाय आसाम राइफल्सनि खोन्द USD गाइखेरखौ लानानै गुबुन गाइखेरनि मुवा जगायगोन। डिब्रुगढ़नि बेसपारानि ज्योतिष्मान बरुवाया दिल्लीआव खुंनाय हादरसायारि गोलोम बोथोरनि उदां एथलेटिक्स बादायनायनि लं जाम्पआव सनानि मासि मोननो हादों। ज्योतिष्माना मैया गोदान दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरु स्टेडियामआव खुंनाय लं जाम्प बारनायाव 6.85 मिटार बारनानै सनानि मासि मोननो हायो। ओरैहाय हारियानानि मोहित जादवआ 6.81 मिटार बारनानै रुफानि मासि मोननो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै।

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलारि खोनासंग्रि फोनसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहोनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियामनि 411.5 मिटार आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगा हर्ट्ज। बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगा हर्ट्ज आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगा हर्ट्ज रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं। लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं। दान्दिसुन नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन। आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु मेथाइनि आयदायाव खोनासंदो भुवनेश्वर महिलारी आरो रीना दास महिलारिनि गानाव नैबे जेवजा गोदान मेथाइखौ।

0: ऐसे सुनता ना भुवनेश्वर महिलारे रीना दास महिलारे कारण सेवजा गोदान मेथाइ दोंसे खोनानबाय आकाशवाणी गुवाहाटी महाबो साख्रिनि रादाब आसाम सरकारनि लक निर्माण एफा पिडब्ल्यूडि बिफानाव लांदां जानाय गासैमोन 53 जुनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकेल मासिनि थाखाय आसाम लक सेवा आयोग आरजलाइ हांख्रायदों मासिफोरनि दानबान्थाया 14,000 रांनिफ्राय 70,000 रांसिम लोगोसे 8,700 रां ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बानासफोर थाफागोन बेनेसानि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन बेनेसे इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं दालायाव 3 बोसोरारि फराफारिनि डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आबुं खारिथि आरो आरजलाइनि थाखाय वेबसाइटा जादों pwdroads.asam.gov.in आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 10 जुन रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डआव गासैमोन 11,127 एसिस्टेन्ट लक' पाइलट मासिनि थाखाय आरजलाइ हांख्रायदों दानबान्थाया जागायजेन्नायावनो दानफायाव 19,900 रां लोगोसे गुबुन गुबुन बानासबो थाफागोन बेनेसेनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन बेनेसेनि जौसिन गेजेरारि एबा 12 थाखोनि जोबथा आन्जाद उथ्रिसारनाय जानो नांगोन लोगोसे फिल्टार इलेक्ट्रिसियान इन्सट्रुमेन्ट मेकानिक रेडिय' एन्ड टिभि इलेक्ट्रनिक्स मेकानिक मेकानिक मटर भेहिकल्स वायरमेन ट्रेक्टर मेकानिक रेन्सार कइल विन्डार मेकानिक डिजेल हिट इन्जिन टर्मार मेकानिक रिफ्रिजिरेटर एयार कन्डिसनिं मेकानिक बेनिनो जायखिजाया ट्रेडआव आईटीआईनिफ्राय फोरमान बिलाइ थानाय जानो नांगोन एबा मेकानिकेल इलेक्ट्रिकेल इलेक्ट्रनिक्स एबा अट'मबाइल इन्जिनियारिं बेनि जायखिजाया दालायाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन आबुं खारिथि आरो आरजलाइनि थाखाय वेबसाइटा जादों इन्डियान रेलवेज डट गभ डट इन आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 14 जुन इन्डियान एयारफर्सआव फ्लाइयिं ब्रान्स ग्राउन्ड डिउटि टेक्निकेल ब्रान्स आरो ग्राउन्ड डिउटि नन टेक्निकेल ब्रान्सआव लांदां जानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय AFCAT 2026 बे आन्जादखौ खुंनो लानाय जादों बेफोर मासिनि आबुं सोलोंथाइनि फारि आरो बैसो बायदिनि आबुं खारिथि आरो आरजलाइनि थाखाय बेनेसेया इन्डियान एयारफर्स डट NIC डट बे वेबसाइटखौ नायनो हायो आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 19 जुन स्टाफ सिलेक्शन कमिशना भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानाय गासैमोन 12,256 ग्रुप बि आरो ग्रुप सि मासियाव थिसननो थाखाय कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेशन 2026 खुंफुंनो थि खालामनाय जादों जुनियर स्टेटिस्टिकेल अफिसार मासिनि थाखाय बेनेसेया जौसिन गेजेरारि थाखोआव खमैबो 60% नम्बर मोननानै उथ्रिसारनायजों लोगोसे ग्रेजुएट जानांगोन एबा स्टेटिस्टिक्स आयदाखौ लानानै ग्रेजुएट जानांगोन स्टेटिस्टिकेल इन्स्टिगेटर ग्रेड 2 मासिनि बेलायाव बिजाथिया स्टेटिस्टिक्स मेथामेटिक्स इकनमिक्स डेम'ग्राफि पपुलेसन स्टेटिस्टिक्स अपारेशन रिसार्च कम्पिउटार इन्जिनियारिं कम्पिउटार टेक्न'ल'जि एबा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स आयदाखौ लाफानानै ग्रेजुएट जानांगोन गुबुन गुबुन मासिनि थाखायबो बिजाथियै ग्रेजुएट जानो नांगोन आबुं खारिथि आरो आरजलाइनि थाखाय वेबसाइटा जादों ssc.nic.in आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 22 जुन साख्रिनि रादाबा एसेनोसै
1: बेयो आगरबानि गुवाहाटी महाबाहु जों दिनै बर' आफादाव हांख्रायनानै लाबोदों सासे सोलोंथाइ गोनां गागि आबादारि बिथाङानो जादों मानिक बसुमतारी जों गिबियावनो नोंथांनिसिम जोंनि बर' आफादनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय
2: खुलुमबाय नोंथां आं गिबियावनो बे आकाबानि गुवाहाटी

0: बारायनांगौबा इउरिया पटास आरो सुपार बे मोनथामबो हासारखौ गलायनानै गाज्रिनि गरायाव इसे रिं बायदि बनायनानै बेयाव हासारखौ होनानै फबना नांगौ दानथाम दानब्रै नुनो दानथामबा देरो तिनि फुट सारि फुट मोनो
1: बेनिफ्राय बिबार लानाया बेसेबांसो
0: बिबार लानाया नै बोसोरनिफ्रायनो बिबार लायो
1: अब्ला गायजेननायनिफ्राय नै बोसोर नांगौ जायो
0: नै बोसोर आरो थाम बोसोरहालागै नोङो फाननोनो हाबाय गोबां रोखोम लिमु खानाय आरो थाम बोसोरहालागै
1: दा नोंथाङा फानजेननाय समनिफ्राय फानजेननाय समाव नोंथाङा बिगासे हायाव बेसेबांसो लिरथायनि एबा ओजननि खारजि मोखैखौ फाननो हाबो नोंथाङा
0: खारजिखौ से जोंनि दा बाजार सिस्टेमा सुनानि फाना माने जोंनो पन हिसाबे फानो आरो बस्ता बा पन बेफोरखौ फानो आरो ए पन हिसाबे फानोमोन
1: नोंथाङा जायगायावनो फानो ना हाथायाव लाङो
0: बे कार्जिखौ खानानै बाजाराव लाबो खाथियावनो बा किल'मिटारनि गाजानाव गरेश्वर बाजाराव फानो पाइकारि एरियावबो फानो पाइकारि एरियाव जौसेनिफ्राय पनाव जौसेनिफ्राय बाजौ द'जौहालागै थायो सिजन लाना सिजन
1: बांसिन मा समाव बांसिन बेसेन मोनो
0: बांसिन बेसेन मोननाया जाबाय सैथो आरो बैसागो सैथो आरो बैसागोआव पनफायावनो बाजौनिफ्राय द'जौ मोनो
1: बिगासे हायाव बेसेबांसो पन ओंखारो जेनेबा सप्तासे बोरै बोरै फानो माला माला खायो
0: खानाय सिस्टेमा जाबाय जोङो सप्तासेयाव खेबनै खायो खेबनै खानायाव
1: बिगासेयाव
0: बिगासेयाव खागासेयावनो दस बेग बार' बेग बेफोरबायदि ओंखारो
1: जेनेबा बाजौ
0: बाजार मोननायाव थामजि बा नैजि बस्ता
1: मोनो आरो
0: मोनो
1: बिगासेयावनो
0: बिगासेयाव
1: जायो
0: बस्तासेयाव पनब्रै पनबा बेफोरबायदि जायो
1: होमब्ला नोंथाङा थामजौ पनसोखौ आरामसे फाननो हायो सप्ता मोनसेयाव होमब्ला नोंथाङा मावनायनि फिथाइ महरै बेबायदि बेसेनाव फाननो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा जानो हायो नङा बेनिफ्राय नोंथाङा जे बुंबाय सिजन लानानै सिजन बेसेन मा समाव बेनि बेसेना बांसिन खमि
0: बेनि बेसेना बांसिन खमिनाया जाबाय जेब्ला गोलोम बोथोर फायो जुन जुलाइ हमना ला जुन जुलाइआव बे समाव गोबां कार्जि ओंखारो बाजाराव गोबां कार्जि ओंखारनायनि जाहोनाव दामफोरा खमियो दानि दिनाव बयनिबो न'खराव कार्जि दंफाङा थायो फांसे फांनैबाबो थायो बेनिफ्राय बेनि गोबांबो थानो हागौ दस दाल बार' दाल दा बिथांमोननि फिथाइआ बयबो खमाव थायो बे समाव बिथांमोना बाजाराव फैस्लाय फैस्लाय बे मुखैखौ लाना फैयो
1: आरो
0: बेनि जाहोनाव गोबां कार्जि ओंखारनाय जायो बाजाराव बे समाव खमियो आरो
1: पनसेयाव बेसेबांसो मोनो
0: पनसेयाव समाव जौसे मोनगोन हयतु सेजौ बाजि मोनगोन बेनि मादाव कार्जिलि कार्जिबो दाम थायो बेसेन थायो नंखाय कार्जिबो थायो बयनिसे दाम कार्जिया जाबाय एलासि होननाय मोनसे जाद दङ एलासि कार्जि मोदोमसोयो एलासि बे मोदोमनि एलासि कार्जिया बयनिसे बेसेन बारा
1: दा बेखौ नोंथाङा मावाखै ना इयुनाव मावनो लादों
0: आं बेखौ मावाखै बेखौ बेबसा हिसाबै मावनांबाय बेनि सा माबाया बारा आरो खरसफोरा बारा फुलिया खुब दाम इसे दङ आंनियावबो फांनै फांथामसो दङ बेखौ बाजाराव दिहुनाबा माने गोबां कास्टमारा लायो आरो
1: दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन जायगायाव हरनाय बेबायदि सोरबाफोर जायगायाव थांनानै लायनाय बेफार फालांगि खालामग्रा बेबायदि सोरबा दङ नामा ना बिदि हरो नामा गुबुन हाथायफ्रावबो
0: गुबुन हाथायाव हिसाबै जोंनि खाथिथिंनो थागिरि बिथां दङ गुरुमु ओनसोलथिंनिफ्राय बे गुरुमु ओनसोलनिफ्राय गोबां फालांगिफोरा जोंनि गामिनिफ्राय मैगं थाइगं लाना फैयो खारजिबो लाबो लाना फैनानै गुवाहाटीयाव फानफायो बिथांमोना आरो बिथांमोना दाम मोनो बेसेनखौ बारा मोनो जोंनि जागाव फाननायनिख्रुइ बारा दाम मोनो ओंखायनो बिथांमोना आंनिफ्रायबो लाबो आंबो हरो बिथांमोना आरो गरसेनि सायाव इसे बार आरो बारा होनासो लाना फैयो आंनिफ्राय
1: ओरैनो जोंनि खोनासंगिरिफोरा गोसो गोजोननाय बायदियै नोंथाङा मोनसे एसे थलमल हिसाबैब्लाबो बोसोराव नोंथाङा बेसेबां हानिफ्राय कार्जि फाननानै बेसेबांसो रां खामायनो हायो बोसोराव
0: आच्चा कार्जियाथ' आंनिया बे अल सिजन आरो अल सिजन मोनसे जाबाय सैथो बैसागु बारना थायो आरो मार्च एप्रिलाव आखार खावनाव मोनसे सम बारनानै थायो आरो बेनिफ्राय ओइ डिसेम्बर जानुवारियाव मोनसे सम बारनानै फिथाइ लायो दा ए मोनथाम सिजननि कार्जिखौ फाननानै आङो 2 बिघा आथा मुखैयाव कार्जियाव फाननानै आं गमैबाबो आङो 4-5 लाख टाका खामायनो हायो आरो बोसोरफा
1: जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ मिथिनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय लोगोसे खोनासंगिरि बिथांमोनाबो गोसो थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं थिबाय दा जों नोंथांनिफ्राय बे 2 खावसे बिघा हायाव 4-5 लाख बोसोराव रां खामायनो हायो कार्जि मोखै फाननानैहाय एबा आबाद मावनानैहाय दा बेयावहाय खरसानि बिथिङाव बुंलायदों नोंथाङा बे आबादखौ मावनायाव मा मा खरसा दङ
0: बे कार्जि आबादखौ मावनायाव खरसा हिसाबै दङ लेबार आरो गिबियावनो लेबार खरस थायो कार्जिखौबो मोनसे जोथोन लानो गोनां जायो

0: थानानै बा दंफां थानानै अदलांना जानायखाय बिसोरखौ माने सुहिनानै सोबनानै जानाय आरो लोगोसे थायो ऐ गुन्जेर एम्फौ थायो गुन्जेर एम्फौ जाबाय ऐ दंफाङाव गुन्जेर थानाय बायदि नुखा बियो खायफा खायफा ओनसोलाव बेखौ जायोबो आरो बेखौ गुन्जेर एम्फौ होनना बुङो बे गुन्जेर एम्फौआबो ऐ गाज्रिखौ हमो बिनि गाज्रिनि गरायावनो अरना होयो बिफाङा अरजुबा बिफाङा थैयो बेनिखायनो आरो गरायावबो अरो आरो लोगोसे गाज्रिनि बिजौथिंबो अरो बिजौआव गाज्रिनि दं गाज्रि दंफांनि गुदिथिं जायखौ जों गरम होनना बुङो बे गरमथिं हाबलांनानै जालांबाय थायो जालांनानै बुथारो आरो बिनि थाखाय मुलि होनांगौ
1: मा मुलि
0: मुलिनि मादाव दङ एडमायर दङ एडमायर होननाय मुलि दङ एम्फौनि थाखाय काका दङ एक्टियार दङ बेनिफ्राय एमिस्टार टप दङ मोजां मोजां कम्पानि दिहुनगिरिफोरनि बेफोरबायदि एम्फौ मुलि दङ बेखौ माने थुलायाव लानानै बे मुलिफोरखौ थुलायाव लानानै गुदियाव जायाव इयो गुदि खालामना लादों गरम बे गरमाव थुलाखौ सोमाव बे गरमाव थुला होनानै बे मुलिखौ माने गरमखौ हेथेना दोनबानो बेयो थैना थायो
1: गावनो गाव
0: गावना थैयो आरो थैबा आरो बिदि दंफाङा बासायबाय बासायनानै सोमखौ महरलाय स्प्रे खालामनाय मुलिसिन थायो आरो गुदियावनो
1: आसा बसुमतारि नोंथां बे एम्फौ एनलानि बाथ्राफोरखौ जों मिथिना मोनबाय माबोरै बिसोरखौ फोथैनांगौ बेनि अनगायै
0: सब आबादावनो हमो ब्लाइट होननाय गाज्रियावबो हमो जेब्ला खुब दै जायो जेका मोनो अखा बारा जायो बे समाव ब्लाइट हमो आरो मोनसे दङ केंकार होननाय मोनसे बेराम दं केंकार बे केंकार होननाय बेरामा जाबाय गाज्रिनि गाज्रि दंफांनि जि खिरा रादार जायखौ जों रादार नांगौ इ रादाखौ माने सेव होयो केंकार होननाय बेरामा बिनि बिजानुआ बे मोननायानो बांसिन बेरामनि मादाव किन्तु गुबुननि बेराम इमान बेराम जाया ब्लाइट बेमारखौ होखानांगोनबा जोङो गिबिनिफ्रायनो जोथोन लानांगौ कन्डाक्ट फांगिसाइड होननांगौ बेरामा जायि सायावनो जायखौ होग्रोयो बेखौ कन्डाक्ट फांगिसाइड होननांगौ बेफोर मुलिखौ साननांगौ बेफोर मुलिखौ साननायाव जों रेडमिल गोल्ड दङ डायटन एम पन्सल्लिस दङ ब्राइट टक्स दङ टाटा मास्टार दङ बेफोर मुलिखौ सारबाय थायोबा गेजेर गेजेर मोना ब्लाइट बेमारा जानो हाया किन्तु जितु केंकार रग केंकार रगा माने जों जायखौ केन्सार बायदि होनना बुङो साभाबिगन जों जायखौ केन्सार बेमार होनना मिथिगौ बेबायदि बेमार गाज्रि दंफाङावबो बे केंकार रगा जायो बेरामा जायो बेनि थाखाय मुलि होबा हामो आरो मुलि होबा फाहामनो हायो रादाखौ मोजाङै थिं लाफिननो हायो बेनि थाखाय मुलि दङ ब्राइटक्स ब्राइटक्स होननाया बेखौ बाजाराव ब्लु कपार होननानै मिथिजायो ब्लु कपार होननानै फान ब्राइटक्स बे मुलिखौ सानोबा बे केंकार रगा हामबोयो लासै लासै हामबोयो आरो सम लायो किन्तु
1: सम नांगौ जायो
0: बेयाव समनि उनाव हामो आरो
1: बेसेबांसो सान
0: बियो बे केंकार बेरामा हामनो थाखाय नै दान थाम दान नांगौ
1: दा गेजेरावनो नोंथां बसुमतारि नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै लानि न'खराव सोर सोर दङ
0: न'खराव फेमिलियानो जाबाय आं आरो आंनि मिस्टार सानै आंहा जाबाय आरो सासे फिसाज्ला दङ फिसाज्लानि आङो बिहामजो लाबबाय आरो बे बिहामजोनि बिहामजोफोरनि फिसाज्लानि सासे गथ' दङ आबै बे साब्बायानो आंनि न'खराव फेमिलियार दा
1: नोंथांनि मिसेसा माबाफोर मावो
0: आंनि मिसेसा जेबो मावा जेबो खामानि मावा बिथाङा संनाय खुरनायनि लोगोसे आंनो गाज्रि आबादाव जथेस्थ' हेफाजाब होयो आरो फिसाज्लाया साख्रि लायो लादो बिथाङा टेट परिक्षा होनानै आन्जाद होनानै उत्तीर्ण आरो बे टेट मास्टार आरो दा बिहामजोआ जेबो मावा बिथांनावनो थायो बिथाङाबो संनाय खुरनायाव मदद होयो
1: नोंथाङा गिबियावनो बे आबादखौ मावनो थाखाय गाज्रि आबादखौ जेनेबा आन्दोआव सोरनिबा थुलुंगाफोर दंमोन नामा
0: आस्सा आं गाज्रि आबादखौ मावनानै थुलुंगा थानायानो जाबाय आं दिनै जि जायगायाव जना दङ आकाशवाणि गुवाहाटी केन्द्र बे केन्द्र रेडिय' दङ आंहा रेडिय' दंमोन आरो आगोलनिफ्रायनो रेडिय' बे रेडिय' माने कृषि जगत होननाय मोनसे अनुस्थान थायो आयदा थायो आरो असमिया दे असमियाव बे आयदाखौ आं सानफ्रोमबो खोनासङोमोन बे रेडिय'आव सानफ्रोमबो खोनासङोमोन बे आयदाया जाबाय हरफायो हरफायनायखाय सम मोनो खोनासङो आबादनि थाखाय गोबां बेयाव रायज्लायनाय जायो मा आबादखौ मा मावो बेयाव आं खोनासंनानै बहुतखिनि आबादनि मिथिनानै आबादनि सोमोन्दै मिथिनानै माने आङो आबादखौ माने मा मोनसेखौ मावबा न'खरखौ सोलिनो हागोन निजे दावखोनो हागोन न'खरनि खरसाखौ दिहुननांगोन बे रोखोम मोनसे भाबिबाय

0: फानिबानो बिथाङा फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो न'खरखौ फिसिनो हायो. जायानो जाथों नोंथांमोन, नोंथांमोना आबाद मावनायनि थाखाय आगान सुर आगान हो. दा आगान होनायनि आगोलावनो मोनसे गोनां भाबिनो गोनां खौरां, बेनो जाबाय स्किल डेभेलपमेन्ट होनना बुङो जायखौ रोंग्रोना लानाय आरो.
1: जेनेबा ट्रेनिं,
0: ट्रेनिं आरो बे ट्रेनिंखौ लाग्रोनाया गाहाम,
1: जोबोद गोनांथार.
0: बेयो जोबोद गोनांथार. बे ट्रेनिंखौ लानायनि उनाव नों जुदि आगान सुरोबा नोंथाङा माने फेलियार जानायनि कुनु खोथा फाया आरो, साक्सेस जानो हायो हायो आरो. ओंखायनो बे स्किल डेभेलपमेन्ट होननाय बे ट्रेनिंखौ लाग्रोनाया मोजांसिन आरो.
1: जोबोद जोबोद साबायखर. खोनासंगिरिफ्रा थारैनो नोंथांनि बेखिनि बोसोनखौ खोनानानै मानिगोन, फालिगोन, जों बेखौ मिजिं थिबाय. बसुमतारी नोंथां, जोंहा स्टुडिअ समाबो जोबनानै फैबाय. जोबनायाव जोंनि आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु बर' आफानिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा साबायखर बावनानै जोंनि दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ इसोरनो फोरमायना जाबाय. गोजोन्थों.
0: गोजोन्थों. खुलुमबाय.
2: एसे सम नोंथांमोना दिनैनि मोगा मोगि लानाय आयदायाव खारजि आबादारि मानिक चन्द्र बसुमतारीजों लानाय मोगा मोगि आयदा खोनांबाय. मोगा मोगिखौ लादोंमोन नगेन दैमारिया. आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु मेथाइनि आयदायाव खोनासंदो प्रदीप कुमार ब्रह्म पाटगिरिनि गाराव नैबे गोदान मेथाइखौ. मेथाइनि बाथ्रा लासित बसुमतारीनि.

एसे सुनोथांमोना प्रदीप कुमार ब्रह्म पाटगिरिनि गाराङाव दोंसे गोदान मेथाइ खोनानबाय बेजों लोगोसे मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु सम जाना फैनायलाय दुलाराय खोनासंग्रा मुसिनसिम जोंनि अननाय सिबिनायखौ खुलुमनायखौ फिन बहनानै दिनै जोंनि पडकास्टखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।

में कामयाबी मिलेगी। हमारे यहाँ पुरानी पीढ़ी के लाखों लोग है जो निरक्षर हैं, वे अवहेलित, अनादृत और शोषित हैं। उन्हें पारंपरिक रूप में अनुष्ठानिक शिक्षा से वंचित किया जाता है। शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मण और राजन्य वर्ग का ही अधिकार था। नारी शिक्षा और शूद्रों की शिक्षा की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाकाव्य आदि इसके उदाहरण हैं। ऊपर लिखित परिस्थिति में मानव संसाधन के विकास के नाम पर न समाज की ओर से प्रयास किया गया था और न राष्ट्र की ओर। पर आज परिस्थिति में बदलाव आया है। पूरे भूमंडल में अनुष्ठानिक के साथ साथ अनानुष्ठानिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। आज शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है। राष्ट्र संघ के चतुर्दश अधिवेशन के प्रस्तावानुसार 1967 से विश्व का हरेक राष्ट्र 8 सितंबर के दिन को आंतर्जातिक साक्षरता दिवस के रूप में पालन करता आ रहा है। हमारे भारत में भी यह दिवस सन 1978 से मनाया जा रहा है। इस दिवस का मूल लक्ष्य है मानव संसाधन का विकास करना, प्रौढ़ लोगों को शिक्षित, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा साक्षर बनाकर उन्हें समाज के उपयोगी बनाना, परिवर्तित जीवन पद्धति से परिचित कराना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ परिचित कराकर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करना। निरक्षर लोगों की तुलना अंध व्यक्ति के साथ की जाती है, क्योंकि अंध व्यक्ति जिस प्रकार सृष्टि की सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार निरक्षर लोग पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का उपभोग नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रौढ़ लोगों के इस अंधत्व को दूर कर उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य एवं पुस्तकीय ज्ञान भंडार को लूटने, उपभोग करने के लिए सक्षम या सामर्थ्य बनाना हमारा तथा राष्ट्र का कर्तव्य है। आधुनिक काल में प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं। महात्मा जी ने हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए नाइट स्कूल खोला था। स्वतंत्रता के बाद सन 1978 में तत्कालीन भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखा था और वही हमारी बुनियाद है। स्वतंत्रता के अवसर पर हमारे यहाँ 30 करोड़ निरक्षर लोग थे। आज अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई है। सन 1901 की लोक गणना के अनुसार हमारे भारत की साक्षरता का दर है 65%। सन 1945 में अर्थात आज़ादी के समय वियतनाम के निरक्षर लोगों की संख्या थी 90% और आज वहाँ साक्षरों की संख्या है 99%। भारत की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में जीवन की दौड़धूप में साधारण स्तर के लोगों के पास पढ़ने लिखने विशेषकर पुरुषों के लिए समय का अभाव है। बावजूद इन परिस्थितियों के हमारे गैर सरकारी संस्थानों के साथ सरकार राष्ट्रीय लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है। साधारणतः 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने की योजना बनाई गई है। बाद में 15 से 45 वर्ष के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए विविध योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें प्रमुख है पूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षरोत्तर कार्यक्रम, श्रमिक साक्षरता कार्यक्रम, धारावाहिक कार्यक्रम आदि। प्रादेशिक स्तर पर विशेषकर हमारे असम में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निर्देश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सन 1997 से प्राधिकरण खोला गया है। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख करता है। वे ऐसे कार्यक्रमों को परिचालित एवं नियंत्रित करते समय प्रौढ़ों की सुविधा के अनुसार विभिन्न सामग्रियां यथा टीवी, डीवीडी, सीडी आदि लेखन सामग्रियों के साथ उपलब्ध कराते हैं। इन कार्यक्रमों के भीतर साधारणतः ग्रामीण
और अर्धनगर

0: नगरीय प्लोरस लोगों को समेता जाता है। यह तात्पर्य है कि इन योजनाओं कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार धन की आपूर्ति करती है। पूर्ण साक्षरता अभियान में भारत सरकार ने 2/3 और असम सरकार ने 1/3 रकम खर्च की थी। यह निश्चित है कि विभिन्न योजनाओं के बावजूद हमें राष्ट्रीय लक्ष्य पर पहुंचने में 100% कामयाबी नहीं मिली है, पर इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा ग्रामीण अंचल के गरीब निरक्षर प्रहर लोगों के साथ नगर के निरक्षर प्रहर लोगों को लाभ हुआ है। इसलिए यह अपेक्षित है कि सरकार इस पथ पर आगे बढ़ते समय खर्च की ओर ध्यान न देकर निरक्षरों को साक्षर बनाने का प्रयास करें। प्रौढ़ निरक्षरों के बुनियादी प्रश्नों का हल निकाले बिना न उन्हें इन योजनाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है और न इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इन्हें लोकप्रिय एवं सफल बनाने के लिए निश्चित रूप में गैर सरकारी संस्थानों के साथ शिक्षित लोगों को मदद करनी होगी, क्योंकि सरकारों के कंधों पर जो दायित्व और कर्तव्य है वे शिक्षित लोगों के कंधों पर भी है। प्रौढ़ व्यक्ति चाहे कोई बाप हो या कोई माँ, शिक्षित अथवा साक्षर होगा तो उनसे उनके बच्चे प्रभावित होंगे, नवीन पीढ़ी साक्षर होगी, राष्ट्र और समाज का भविष्य प्रोज्वल होगा।
1: प्रौढ़ शिक्षा और इसकी आवश्यकताएं, इस विषय पर अभी आप डॉक्टर अमूल्य बर्मन से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
2: হিন্দী কথিকাৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। শ্ৰোতাসকলে, অনুষ্ঠান শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাভাৱৰ পৰা। এতিয়া শুনক অনুপ জলতাৰ কণ্ঠত এটি ভজন।

0: চাৰুগুহাৰ কণ্ঠৰে গীতেৰে সামৰিছোঁ আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানটি। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া সমাচাৰ সন্ধিয়া দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको

0: आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इम्पोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: শ্রোতাকলে চিত্ৰগীত শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহৰ।